0: करी, अन्न, जलाबुटी, साग सब्जी, फल फूल सहित का पोषण पूरा खाना ले, बच्चा खाना तंदुरुस्त बनाए, पूरा खाना संसद दुई वर्ष तक स्तर तार जारी करी।
1: रेडियो गुरुवार एफएम द्वारा जनहितको जारी संदेश।
2: हामीले गरेको कोसिलो कुरा खाना छ मात्रपछि अनि बालेसको काम अन्न केलाटुली साग सब्जी फलफुल सहितको कोसिलो कुरा खानाले बच्चालाई तन्दुरुस्त बनाउँछ। पुरा खाना सँगसँगै दुई वर्षसम्म यसको काम चलाएका छौँ।
1: रेडियो गुरुवार एफएमद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: एक हिसाब से सबको पैसा देना चाहिए वो बिहार के बस जबकि यहाँ ऐसा था कि जो रास्ता यहाँ सिटी टू में रास्ता ले लिया पैसा भी हो बहुत बचती है वो फिर बहुत प्रकार
4: होती है। रेडियो को भाव है 107.7 मेगाहर्ट्ज़।

0: चिंता और तनाव बाट मुक्त रहँदा मुटु रोग बाट बच्न सकिन्छ।
1: 40 वर्ष कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौ।
0: चिलो पदार्थ माछा मासु कम खाऊ। खानामा साग र फल फुल खाऊ।
1: मद्यपान र धुम्रपान सेवन नगरौ।
0: स्वस्थ रहौ। सुखमय जीवन बिताउ।
2: रेडियो द्वारा जरुरी प्रचारी सन्देश।

मध्य में एक बस में सड़क दुर्घटना पड़ी 31 बजे संत पहुंचे पांच वर्षों को ध्यान में रखा सड़क दुर्घटना पड़ी 170 बजे संत को ध्यान में देखिश।

0: बिग डील हो, हम परेशान उसका टाइम वो बिग डील के माध्यम से हमारे किसान समस्या वो समस्या के दवा समाधान वहीं से करे थी। वो हमारे विद्याओं का रोग के किरा के माटी डाली नाली सब वो विषय के बीच वहाँ पर सुन रखाई। वो अगर किसानों के समस्या वहाँ से समाधान नहीं हुए तो हमारे संबंधित ऑफिस में वो समस्या पटाएगी, ऑफिस में अनुसंधान हुए संपूर्ण हुए तो वो किसान उपकरण फॉलो करके तो वहाँ समस्या ऐसे मिलेगी, अपन समस्या ऐसे मिलेगी और ये समस्या का समाधान नहीं हो कहीं के हमें बता देते थे। जब किसान के लिए कुछ समस्या पर बाली नाली का धान समस्या गहुँ समस्या मकई समस्या कुछ समस्या हुई तभी अपने से हुई तो हमारे देखे होकर जवाब दें तुरंत जवाब देखेंगे।
1: किसान का आवश्यक समस्या किसान अपना विशेष कसम कसम समस्या सकता
0: किसानों का बाली नाली समस्या है धान गहुँ मकई नाई भरण या उसमें कुछ रोग लागल कुछ बिरुआ लागल या माटी खराब हो गई कुछ भी समस्या हुई तो कुछ इसलिए गैया दूध नहीं दे गैया बाली नाई नहीं लागल पसीना ऐसी समस्या हुई तो ये सब समस्या के बारे में जैसे समस्या हुई तो क्या प्राविधिक समस्या आपने पूछ सकती और हमारे बीते यहाँ से जवाब दी। जरूर करे पाएंगे अपन लाभ तो खुलल भाई सबको किसान के लाभ पाएंगे। हमें हर एक शुक्रवार संध्या के 4 बजे से 6 बजे तक हमें बैठी वहाँ 4 बजे से 6 बजे तक किसानों का प्रश्न सुनिए तो हमारा दिव्य द्वारा दिए 1,11,35 नंबर में फोन कर दे तो वो फोन कर लिया पैसे नहीं लगा 10 मिनट तक आपने हमारे दिव्य से अपन लागल समस्या के बारे में छलफल कर सकती वो एक चोट में अकेले समस्या पूछना का करना कुछ क्वेश्चन नहीं हो अपने एक से ज्यादा क्वेश्चन भी सदस्य भी यहाँ से कृषि मौसम सलाह बुलेटिन निकट हर एक शुक्रवार तो उनके लाभ हो कि किसानों को पता नहीं रहती बदली जाएगी की पानी पड़ेगी बाढ़ आएगी का हुई मौसम से संबंधित कुछ चीज पता नहीं हुई तो उनका लाभ हो सलाह आगे वो पता पाई तो आप बारी नारी दिन तो वो तो सुरक्षित रहने पाई मेरे ये सलाह हो ये हफ्ता का मौसम मौसम अध्ययन करके या 10 हफ्ता के मौसम के अनुमान करके वो मौसम से बाली नाली में पशु में कैसे समस्या आई उस समस्या के बारे में परिमान दिया वो समस्या समाधान के दिया रहा बीमारी हुए तभी काम लगना चीज का तो वो काम लगना चीज का हम तो कैसे पकड़ थी की ये 7 से 53 जो नगर पालिका गाँव पालिका बाट है वो नगर पालिका गाँव पालिका में हमें पकड़ देती यहाँ से वो वहाँ के कृषि शाखा वो जनाव देते किसान दिन वो बहुत काम लगना चीज रहा हर एक हफ्ते निकट वो किसान के लाभ उन आईना वाला बा वो कीड़ा लागी तो कैसे के उपचार करी वो सब बात कृषि मौसम सलाह बुलेटिन में लिखा था।
2: मेरा जानकारी दे रही सर जानकारी

0: pertanyaan private pemain takko tidak bersama pertama tapi kepanu menutupi harga tak sedang kantor ke 40 bersih di lebih ke 20 bersih tak sampai si mati bintang hal yang saya akan membagi lebih pagi akan nomor itu dalam arti kebanyakan Sulit harapan yang disiplin mengambil kesempatan masih dengan perasaan harus memerlukan kerja kerja kerja untuk kamu berjaya bagi mereka untuk tahu ke jalan terbaik juga pertama harap kamu memiliki saham memerlukan kerja awal umur kekalan kamu dan disiplin pertama publik mengambil cari cara rosgari kerja harus Bagi semasa sematan hari itu, cawak kalau mau jaga kondisian anda sendiri, apa sahaja perdaya diperlukan kehangatan berkeluarga dan sedangkan kehangatan bersenda, ayuk sih jaga kondisian pada sisi dalam mencapai nisah keluarga. Sekarang ayuk peribadat kesan kemihin pas semasa sematan karena pasti mendekat hari tiada sisi semasa berit juga diberada. Walaupun amat terlalu ini pemilu setiap sematan ayuk kita berasi asal berjuang berde. Mereka berjari sukar sore ke tiada pemimpin dari tetap suku masyarakat dan perjabatan kerana usai kedudukan tiada di sana saat pertarungan itu perlu dilakukan di Google Mahathir awal berhal tanggung untuk perjuangan dan perjabatan kerana sedang tak kau bersinda akhir dan kita kau pertanyaan halbaga. Kenal
1: sekali. Nampak sudah banyak sangat sangat cerah jadi orang yang baca itu baca dalam sunyiannya yang jelas nirbahasan kemat karena asbihan yang jelas itu nirbahasan adikai itu ras kemari kami sah kuli 1,386 mat prapt baik hubijaya pelukita sangka wanita upah cina rupa ucap sah nirbahasan itu baca mahasiswa bisnis sejuta upah mahasiswa perdip Azare Ustaz Asyamah Tika Mali Upadhyay Vijay Pura Pita Dajana Kari Samiti Sada Sake Matadar Masit Chayin Pilbata Uddho Kukhar Kho Bani Chay Ukhar Kho Upad Asyamah Kamal Kumar Gargyo Vishnu Prasad Sreshta Associate Sada Asyamah Rajiva Talanga O Abdul Wahid Ansari Tata Sambhata Sada Asyamah Panadhar Andai us Suresh Sun Panjara Nirmal Kirpasi Pilbata. Bhati Pabajanat Kampalika Chaka Isuri Mathemik Vidhalayman Mathemik Taha Kabarit Sikchaya Ka Pardana Sikchaya Ka Pardana Ka Parikchama Nimitita Pila Asamka Ka Yilva Sankhya Anutan Kodam Tadwar Kanik Vishayka Mahi Taha Tirtya Sreni Sikchaya Patra Lakhirana Pardham Patra Ka Parikchavo Nabijama Parikchaya Tirtma Prashna Uthaira Pita अपसाउन छागते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार नौजना आवेदन तिलकपुर फदौ क्षेत्रते संचार विभाग स्वरूप पत्र परीक्षामा पाँच नफे तिलक सहभागी पहिला दिन सार्वजनिक परीक्षा नतिजामा सहभागी पाँच जना परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पाँच प्रक्रिया निर्वाचित गराउँदा परीक्षामा सहभागी प्रक्रिया पास भए पाँच का सागर चौधरी उत्तर पुस्तिका गाउँपालिका से तयार पलक उत्तर पुस्तिका उपन्यास प्रश्न उठाए कि पुनः परीक्षण गरा विद्यालयमा निवेदन दिनुबाट पचास्ठो वस्तुगत प्रश्न मध्ये अपना 35-36 प्रश्न उत्तर मिलेर टाइपगर्ती चौधरी प्रश्न पत्र स्तर उत्तर पुस्तिकाका समेत निष्पक्ष जाँच रिपोर्ट मात्रबाटै हामी परीक्षार्थीका निवेदक पार्छ विद्यालय प्रशासन तथा पालिकाका शिक्षा शाखाको सरकारद्वारा बीच छलफल शुरू हुँदा बजरात गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णु प्रसाद ठकाल हो गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाही घटनामा गम्भीर रूपमा लेखी आवश्यक छानबिन अनुसन्धान गरा निर्देश सन्देलक जानकारीबाट छानबिन प्रक्रियाको परिणामसँग अब शिक्षा नियुक्ति शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया स्वागत

स्थान पर कल्पना सुधार आवश्यक सूचना समय मनी वाइब्रेट विकास निर्माण तथा अगर गतिविधि में सहभागी होना समेत समस्या होना कर स्थानीय कंट्रोल कहाई बार

0: साबुन तो रसायन हानिकारक नहीं होगा वो फिर यदि सफर करता है पूजा के लिए मजा आएगा
1: ईश्वर सुधारना को सही जानकारी पाएगा और लखन उपचार के प्रकार का कैसे पता लगेगा आधिकारिक इसलिए मैं नेपाल दर्द गुवाहाटी में जाकर आवश्यक जानकारी लिए चेक किया नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कुरियाला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सह

ही अपने को होता है वहां पर इस प्रश्न को किसी बार अगर पकड़ लेगा अपने पास है कि क्या हो एक छुट्टी समझाऊ नमारे प्रणय को होता है इस प्रश्न को किसी बार अगर बाल विवाह होता है त्यस्तो विवाह धेरै कारण हुन्छ विवाह गरेर लाइफ टाइम प्रोभिजन कारणले पनि हुन्छ बाल विवाह कारण

0: χρήμα στον έξαρι σαν το δελά. Αψινή σχέδια του σε προσάρβινα στα ζάχαβα.
1: बालिका हिंसा और हत्या का घटनाले समाज को संवेदनशीलता सुरक्षा मधि गंभीर प्रश्न उठाएको छ। बाल बालिका घर विद्यालय का समाज सभी ठाव सुरक्षित वातावरण दिन राज्य और अभिभावक दुवै जिम्मेवार पर्न पर्छ। अपराधलाई पराकाष्ठाले कारवाही संगे हिंसा रोकथाम का लागि प्रहार पारे निगरानी र जनचेतना आवश्यक छ। बालिका को सुरक्षा केवल परिवार को होइन सुरक्षित सभ्य समाज निर्माण को साझा जिम्मेवारी हो। अब खबर संतोष सिंह सप्तरीको सम्मान नगरपालिका तिर्मा बेगोसिया बालिकाको शिक्षा अत्यन्त हत्या सौतनी आमाले गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

आज हर खबरों पर बाकी खबर। नर्मदा कोसी पहाड़ी जिला में सभी भन्दा बड़ी तरकारी उत्पादन होने जिला में पर्छ। गत आर्थिक वर्ष में धनकुटा में 1,57,004 मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन होता 7,97,58,00,000 रूपया भित्रिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी विभिन्न परियोजना लगायतका कारण तरकारी बिक्रीबाट धनकुटाका किसानले राम्रो आमदानी लिन सक्छ।

0: मिशन द्वारा जनहित में जा रही संदेश
1: समस्या तो आपके कृषि समाधान को भी कार्यक्रम बढ़ा।